चेतन व सम्मुख, चेतन व सम्मुख, चेतन व सम्मुख को गिडियन किबेत नबाई तो टू हमें चिताएंगे, हमें चिताएंगे, हमें चिताएंगे स्टार 274 हैश हमें चिता अकेंगे, हमें चिता अगेंगे हमें चिताएंगे डैडी agere gipsil joget engusume kala mitendani kongo gipsil joget karibu sana, karibu sana gipsil joget ure chita enge aganyi chita enge star 274 hash